0: बालिका दिवस पे। मैनों अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाओ जाते हैं। ई दिना को मनावे को मुख्य उद्देश्य है कि बालिकाओं के अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और बिन्ना हरो भौजी हरो, देखो बेटियां हमारे समाज को एक अनमोल हिस्सा है, तो अपनी मौड़ी परिवार की खुशियां हैं और देश को भविष्य। तभी तो बहनों मौड़ियन को भी मौड़ा की तरह समान अवसर और सम्मान मिलवो बहुत ही जरूरी है। तो हमारी सभी बहनन से हम बीर बीर जय के वो चाहते हैं कि बेटियां कोनो भी परिवार पे बोझ नहीं है, बे अपने परिवार की शान और सम्मान होते हैं। बहनों जी घर में मौड़ी को प्यार, शिक्षा और आगे बढ़वे को अवसर मिलत है तो वो घर में खुशहाली तो जरूरी आउत है। तो हमारी मौड़ी को अच्छी शिक्षा से अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलानी है, जैसे कि वे अपने पैरन पे खड़ी हो सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। बिना और अगर आज के टाइम में देखा जाए तो हमारी बिटिया शिक्षा, खेल, खेती, विज्ञान, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं। और हमारी गांव की बेटियां भी मेहनत और लगन से हर क्षेत्र में अपाओं और अपने घर परिवार को नाम रोशन कर रही हैं। बस जरूरत है कि अपनी बिटिया के संग संग खड़े रहें और उन्हें पौष्टिक भोजन, दूध, दही, घी, फल, मेवा, ये सभी चीज़ें खावे पीवे को दें और उनकी ज़रूरतों को समझें। जब मौड़ी अपने पैरन पर खड़ी हो जाए, पढ़ लिख जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, तभी बाकी शादी ब्याह के बारे में सोचें। और बिना और हमारी मौड़ियन की सुरक्षा केवल परिवार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज की, गली की, मोहल्ला की, गांव की और देश विदेशन की जिम्मेदारी बनत है। और हर माँ को कर्तव्य ये है कि अपनी मौड़ी को सम्मान दिलाएं, वासे खुल के बात करें एक सहेली की तरह। तो फिर देखो अपनी बिटिया कभी दूर नहीं जा सकता है, कभी दूसरे दोस्तन को नहीं बनाएगी और ना कभी कोई बातन को छुपाएगी, वो हमेशा सही रास्ते पे चले है। और जा तरह से हमारी बिटिया खूब ऊंचाइयों पर जय है और अपने घर परिवार को नाम रोशन करे है। तो मैंने देखो जय संबंध में आज हम एक विशेष वार्ता लेके आए हैं, जाको विषय है बेटी सम्मान, समानता और सशक्त भविष्य की पहचान, जाकी जानकारी दे हैं श्रीमती नीलम सारस्वत। तो चले अपन सुनते जो नौनी सी वार्ता।
1: आज हम राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बेटी केवल परिवार की सदस्य नहीं बल्कि समाज की शक्ति, राष्ट्र की संभावना और भविष्य की निर्माता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस विशेष अवसर पर मैं देश की प्रत्येक बेटी को स्नेह, सम्मान और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। जहाँ बेटियाँ मुस्कुराती हैं वहीं खुशियों के दीप जलते हैं, जहाँ बेटियों को पंख मिलते हैं वहीं सपनों को आकार मिलते हैं। बहनों, जब एक बेटी जन्म लेती है तो केवल एक बच्ची संसार में नहीं आती बल्कि वह अपने साथ अनगिनत संभावनाएं, सपने और एक नए भविष्य की उम्मीद लेकर आती है। वह कभी माँ बनकर संसार को जन्म देती है, संस्कार देती है, तो कभी शिक्षिका बनकर ज्ञान बांटती है, कभी डॉक्टर, वैज्ञानिक, खिलाड़ी बनकर देश की उन्नति में सहायक होती है और देश का गौरव बढ़ाती है। इसलिए बेटी को कमजोर और बोझ समझना केवल एक गलत धारणा ही नहीं बल्कि समाज की एक बहुत बड़ी भूल है। बेटी बोझ नहीं भविष्य की नींव है, बेटी बोझ नहीं भविष्य की नींव है, यह दया की पात्र नहीं, बेटी को अवसर चाहिए उपकार नहीं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम बेटियों के प्रति अपनी सोच को बदलें, क्योंकि बेटी को यदि शिक्षा मिलेगी तो परिवार की सोच बदलेगी, बेटी को यदि सम्मान मिलेगा तो समाज का भविष्य संवरेगा।

अक्सर कहते हैं बेटी और बेटा समान हैं, लेकिन क्या केवल यह कहना ही पर्याप्त है? नहीं, समानता का अर्थ केवल शब्दों में समान होना नहीं। समानता का वास्तविक अर्थ है समान शिक्षा, समान अवसर, समान सम्मान, समान अधिकार और अपने सपनों को पूरा करने की समान स्वतंत्रता। यदि बेटे से यह पूछा जाता है कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो यही प्रश्न बेटी से भी पूछा जाना चाहिए। यदि बेटे के सपनों को परिवार का सपना माना जाता है, तो बेटी के सपनों को भी उतना ही महत्व मिलना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि बेटी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि उसका परिवार उसके साथ नहीं है। उसे यह महसूस होना चाहिए कि हर विषम परिस्थिति में भी उसका परिवार उसके साथ खड़ा है। बेटी के अधिकारों की रक्षा केवल कानून की जिम्मेदारी नहीं है बहनों, यह समाज, परिवार, विद्यालय और हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे मत रोको उड़ने से, मेरे पंख अभी खुले हैं। मुझे मत रोको उड़ने से, मेरे पंख अभी खुले हैं, मेरी आँखों में सपने हैं और रास्ते अभी खुले हैं। मुझे अवसर दे दो बस, मैं इतिहास बदल दूंगी। जिस दिन तुम विश्वास करोगे, उस दिन मैं आसमान छू लूंगी। बहनों, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब बेटियों को अवसर मिला है, उन्होंने किसी भी क्षेत्र में स्वयं को पीछे नहीं रखा। हमारे देश की बेटियां खेल के मैदानों से लेकर विज्ञान की प्रयोगशालाओं तक, प्रशासन से लेकर सेना तक, शिक्षा से लेकर अंतरिक्ष तक अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। कल्पना चावला ने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक पहुंचकर करोड़ों भारतीय बेटियों को सपने देखने का साहस दिया। मैरी कॉम ने खेल के मैदान में यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, जितनी भी कठिन क्यों ना हो, दृढ़ संकल्प के सामने कोई बाधा बड़ी नहीं होती। बहुत से नाम हैं, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, मिताली राज, अवनी लेखरा और अन्य कई बेटियों ने अपने परिश्रम से देश का गौरव बढ़ाया है। किसी महापुरुष ने बहुत ही सुंदर कहा है, एक बेटी पढ़ती है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित नहीं होता, उसका पूरा परिवार शिक्षित होता है। और जब बेटियां आगे बढ़ती हैं, तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। इसलिए बालिका शिक्षा एक योजना का विषय नहीं है, यह देश के विकास की आधारशिला है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बेटी विद्यालय तक पहुंचे, नियमित रूप से पढ़े और अपनी शिक्षा पूरी करे। उसे विज्ञान, साहित्य, गणित जो भी पढ़ना है पढ़े। यदि उसे खेल के मैदान में उतरना है तो उतरे और खेले। उसे डॉक्टर, इंजीनियर, लेखक, शिक्षिका जो भी बनना है, उसे अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि सपनों की कोई जाति वर्ण नहीं होता, सपनों की कोई जाति वर्ण नहीं होता, सपनों का कोई लिंग नहीं होता, प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती और अवसर पर किसी का एकाधिकार नहीं है। बहनों, बेटियों का सशक्तिकरण की शुरुआत घर से ही होती है। हमारे घर में बेटे और बेटी के लिए बनाए गए नियमों पर हमें विचार करना होगा। क्या हम बेटे और बेटी को समान अवसर देते हैं? क्या हम उनके साथ समान व्यवहार करते हैं? बेटी को केवल सुरक्षित रखना पर्याप्त नहीं है, उसे सक्षम बनाना भी आवश्यक है। उसे यह विश्वास होना चाहिए कि यदि उसके साथ कोई अन्याय होता है तो वह अपनी बात कह सकती है और परिवार और समाज उसके साथ खड़ा है, क्योंकि एक सशक्त बेटी केवल अपने लिए नहीं लड़ती, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाती है। आज हमें यह संकल्प लेना चाहिए, ना बेटियों के सपनों पर पहरा होगा, ना उसकी शिक्षा में कोई बाधा होगी। ना बेटियों के सपनों पर कोई पहरा होगा, ना उसकी शिक्षा में कोई बाधा होगी, ना उसके साथ कोई भेदभाव होगा, ना उसके अधिकारों की अनदेखी होगी। हम केवल

0: बेटियों को लक्ष्मी कहकर प्रसन्न ना हो, उन्हें अवसर भी दें जिससे वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। उन्हें केवल घर की इज्जत ना कहें, उन्हें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता भी दें। उन्हें केवल नाजुक समझकर रोकें नहीं, उन्हें कठिनाइयों का सामना करने का भी साहस दें, क्योंकि बेटी को मजबूत बनाना ही वास्तव में समाज को मजबूत बनाना है। बहनों, आज के इस विशेष अवसर पर मैं विशेष रूप से सभी माता पिता से यह आग्रह करना चाहूँगी कि अपनी बेटी पर विश्वास कीजिए, उन्हें सुनिए, उनके प्रश्नों का सम्मान कीजिए, उनकी असफलताओं पर उन्हें डांटने की बजाय उनका हाथ थामिए। यदि वह गिरती हैं तो उन्हें उठना सिखाइए, फिर से प्रयास करना सिखाइए और छोटी छोटी सफलताओं पर उनकी सराहना कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। उन्हें यह मत कहिए कि तुम लड़की हो, तुम यह नहीं कर सकती, बल्कि यह समझाइए कि तुम प्रयास करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये चार शब्द किसी भी बेटी के जीवन का दिशा बदल सकते हैं। आज आवश्यकता केवल बेटी बचाने की नहीं, बल्कि बेटी को पढ़ाने, समझाने, सम्मान देने, सुरक्षित रखने और आत्मनिर्भर बनाने की है। आइए आज हम यह प्रण लें कि हमारे आसपास कोई भी बेटी केवल इसलिए अवसर से वंचित ना रहे क्योंकि वह लड़की है, और यदि बेटी अपने सपनों की ओर कदम बढ़ा रही है तो हम उसके रास्ते की दीवार नहीं बल्कि उसकी उड़ान के पंख बने। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, वो घर की रौनक आंगन की शान है, वो घर की रौनक आंगन की शान है, वो माँ की ममता पिता का अभिमान है, वो कल की आशा आज की पहचान है। बेटी केवल बेटी नहीं, भारत के भविष्य की उड़ान है। आइए राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस पावन अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हर दिन, हर घर और हर परिस्थिति में हम बेटियों को समान अवसर, समान सम्मान दें। इसी संदेश के साथ आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: बहनों देखो, अभी आप सुन रहे थे जी नौनी सी वार्ता, जाको विषय तो बेटी सम्मान, समानता और सशक्त भविष्य की पहचान, जाकी जानकारी दे रही थी श्रीमती नीलम सारस्वत। तो बहनों देखो, हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारी नीलम बहन ने इतने अच्छे पूरे विस्तार के संग बेटी के बारे में बात बताई, समझाई कैसे रखना है, कैसे खिलाना है, कैसे देखभाल करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बहनें उनके बताए रास्ते पे जरूर चलेंगी। अब बहनों देखो, बारी है एक और लोकगीत की, तो सुनते हैं राजीव कुमार रावत से जो प्यारा सो लोकगीत। लेकिन बात से पहले लेते हैं तनक विराम।

बनाहरो देखो, अबे आप सुन रहे थे राजीव कुमार रावत से जी 900 लोग की। अब बनारो अब अपन चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के बारे में। बनारो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करावे वाली माताओं के लिए चलाई जा रही है, तो एक महत्वपूर्ण योजना है जे। तो जे योजना को मुख्य उद्देश्य माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल करना है और गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। तो बिना रो भौजी और देखो, जे योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को जब पहली संतान के जन्म पर देखो 5,000 की आर्थिक सहायता 2 किस्तन में दी जाती है, और यदि दूसरी संतान बेटी होते तो महिला को 6,000 की सहायता दी जाती है, और जे राशि बहनों सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। मैंने ग्रामीण बहनों को चाहिए कि गर्भावस्था के दौरान टेम टेम पे अपन स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं, वजन करवाएं, पौष्टिक भोजन खाएं और डॉक्टर की सलाह से के अनुसार ही दवाइयां लेवें, और जे योजना को लाभ लेवे के लिए अपनी आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्रों से संपर्क करें, जैसे कि वहाँ से जे योजना की पात्रता और आवेदन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना रो देखो, हम तो हम और जे रेडियो के माध्यम से हमेशा जे ही कहत रहते हैं और जानकारी देते रहते हैं तरह तरह की कि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देते है। तो मैंने अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें, और जे सरकारी योजनाओं को पूरा पूरा लाभ लेवें। अब मैंने देखो चल सुनवा देते हैं एक और 900 देवी गीत ममता गोस्वामी से।

बहनों देखो, अबे आप सुन रहे थे जो देवी गीत। अब बहनों देखो, घड़ी सारो कर रही है, चलवे की बेरा हो गई है। हम आपसे फिर मिलें और सभी बहनों को फिर से एक बार शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कल्पना बहन को दे इजाज़त, हमारी सभी बहनों को राम राम।

अभी ग्राम सभा कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किया गया। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में आइए सुनते हैं जौहर महमूद इन हांगकांग फिल्म का गीत। कमर जलालाबादी और इंदी पर ने गीत लिखा है। इस गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

हराया धन। लीजिए इस फिल्म का गीत सुनिए। किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों ने इस गीत को गाया है।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम डगर विकास की। विषय है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना और योगदान हमारे इंदौर केंद्र का।

विकास की। नगर विकास के कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के समस्त श्रोताओं को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पीएम ई ड्राइव योजना पर केंद्रित। श्रोताओं, पीएम ई ड्राइव योजना भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने और मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए शुरू की गई है। यह एक प्रमुख पहल है। इसका नाम पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट है। इस योजना का उद्देश्य है देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित करना, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी के निर्माण को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और जीवाश्म ईंधन

पर निर्भरता घटाना है। हाल ही में भारत सरकार ने इस योजना को 2 साल का विस्तार देते हुए इसकी अंतिम तिथि 31 मार्च 2028 कर दी है। यह योजना कई तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर व्यक्तिगत खरीदारों के लिए, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर और रिक्शा ई कार्ट छोटे कमर्शियल ऑपरेटरों के लिए है। इलेक्ट्रिक बसें बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन के लिए उपलब्ध की गई है। ई ट्रक और ई एम्बुलेंस माल ढुलाई और मरीजों को प्रदूषण मुक्त परिवहन देने के लिए भी इन्हें योजना में शामिल किया गया है। श्रोताओं, केंद्र सरकार की पीएम ई ड्राइव योजना एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। हमारे युवाओं और नौकरी पेशा लोगों की, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स हो या ऑफिस जाने वाले प्रोफेशनल्स, हर किसी को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स भा रहे हैं। पीएम ई ड्राइव के तहत अब ई स्कूटर खरीदना और भी आसान हो गया है। आपको बस अपना आधार वेरिफिकेशन कराना है और पोर्टल से एक ई वाउचर जनरेट करना है। शोरूम पर गए, वाउचर दिखाया और सीधे बिल में से 5,000 रूपए तक की सब्सिडी माइनस। कोई लंबा कागजी झंझट नहीं, पेट्रोल के बढ़ते खर्च से आजादी मिल रही है, सो अलग। अब बात करते हैं हमारे ऑटो और ई रिक्शा चालकों की। दिन भर शहर में सवारियां ढोने वाले हमारे चालक भाइयों के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। पहले से जो कमाई पेट्रोल डीजल में धुआं बनकर उड़ जाती थी, वो अब सीधे उनकी जेब में आ रही है। ई रिक्शा और ई थ्री व्हीलर्स पर मिल रही भारी सब्सिडी से कई चालकों ने अपने पुराने वाहन बदल लिए हैं। अब वे दिन भर में ज्यादा बचत कर पा रहे हैं और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे रहे हैं। और हाँ, हमारे आम नागरिकों को कैसे भूल सकते हैं, आपने AICTSL की शानदार वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें तो देखी ही होंगी। पीएम ई ड्राइव योजना के तहत इन ई बसों को बढ़ावा मिल रहा है। बिना शोर और बिना धुएं वाली ये बसें शहर के सार्वजनिक परिवहन को वर्ल्ड क्लास बना रही है। साथ ही योजना में ई एम्बुलेंस और ई ट्रकों को भी शामिल किया गया है, ताकि मरीजों को शांति से अस्पताल पहुंचाया जा सके और माल ढुलाई भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। इस संदर्भ में

से जो है आपका पोल्यूशन कम होता है, इट इज मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली. सो इसमें जो एक दो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं, वन ऑफ देम इज पीएम ई बस एंड सेकंड इज पीएम ई ड्राइव. द आइडिया इज राइट नाउ पीएम ई बस स्कीम के अंडर हम लोग इंदौर शहर में फेज वन में अबाउट 150 बसेस चलाएंगे, जिसमें से अबाउट 50 बसेस चालू हो चुकी हैं. फेज टू में हम लोग अराउंड 250 बसेस चालू करेंगे. फेज टू इज येट टू बिगिन. सो जो फेज वन एंड फेज टू अगर अपन माने तो फेज वन प्लस फेज टू मिला के एंड आने वाले फेजेस मिलाकर अपना इंदौर शहर के अंदर मोर देन 400 to 500 आपकी इलेक्ट्रिक बसेस हो जाएंगी. पुराने स्कीम्स के अंडर भी हमारी कुछ इलेक्ट्रिक बसेस चल रही थी, तो टोटल ये नंबर अब मोर देन 500 हो जाएगा. इससे क्या है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को एक बहुत पुश मिलेगा. दैट इटसेल्फ कम्स अंडर द ब्रॉडर आपका ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव. सो जो भूमि है GUMI, द फोकस इज ऑन पुशिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन, क्लीनर मास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन. The second scheme that that is getting a push from Government of India and Government of MP is PM E-Drive. जब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मास ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो यू नीड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक आपका इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए PM E-Drive स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें अंडर डिफरेंट कैटेगरीज आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस मिलेगी एंड बेस्ड ऑन ऑपरेटर मॉडल और एजेंसी मॉडल यू कैन इंस्टॉल चार्जिंग स्टेशंस एंड रन दीज. सो हमने पीएम ई ड्राइव के तहत वी हैव सेंट प्रपोजल्स ऑफ मोर देन 50 चार्जिंग स्टेशंस एंड चार्जिंग पॉइंट्स. दीज इंक्लूड बोथ आपका गवर्नमेंट ऑफिसेज एज वेल एज गवर्नमेंट प्लेसेज. गवर्नमेंट ऑफिसेज मीन्स की जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कलेक्टर ऑफिस हो गया, नगर निगम ऑफिस हो गया, एंड पब्लिक प्लेसेज कैन बी आपका एयरपोर्ट के पास कोई जगह या फिर किसी पब्लिक पार्क के पास कोई जगह. सो इस इनिशिएटिव के थ्रू वी आर ट्राइंग टू बूस्ट द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल होगा हर जगह, तो जो लोग आज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं या जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेस में संख्या बढ़ेगी, तो उनको अपॉर्चुनिटी चार्जिंग एंड ऑन रूट चार्जिंग की फैसिलिटीज मिलेगी, विच विल गिव एन ओवरऑल बूस्ट टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी. सो बोथ दी स्कीम्स द पर्पस इज टू गिव अ बूस्ट टू क्लीनर ग्रीनर अर्बन मोबिलिटी. वन ऑफ देम बींग मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए पीएम ई बसेस, जिसमें हम मोर देन 300-400 बसेस तो आने वाले कुछ समय में चला देंगे, इवेंचुअली मोर देन 500 इलेक्ट्रिक बसेस टारगेट करेंगे. एंड अदर इज पीएम ई ड्राइव, जिसके तहत जो ये इलेक्ट्रिक बसेज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो किसी भी शहर में बनेंगी तो उनको चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा. वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आपका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ये भी रहेगा दैट इलेक्ट्रिक मास ट्रांसपोर्टेशन जो होगा, पर्पस वुड बी टू प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन. सो जैसे आज हम नई पीएम ई बस देख रहे हैं शहर में, सो वो आपकी एयर कंडीशनड विथ मैनुअल ओपनिंग ऑफ डोर, सॉरी ऑटोमेटिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर एज वेल एज सीसीटीवी है. जब आपकी एक एयर कंडीशन सीसीटीवी बस होती है तो एक सुरक्षित परिवहन की श्रेणी में आती है. इसमें जो है महिलाएं आराम से सफर कर सकेंगी. सो ओवरऑल आपका ग्रीन मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है उस डायरेक्शन में भी काफी फायदेमंद साबित होगा, विच इज आपका लास्ट माइल एक्सेस प्रोवाइड करना ऑफ आवर्स, जो आपके ऑड आवर्स होते हैं कि जैसे सुबह 6 बजे भी हमारी बस रहेगी, रात 9 बजे भी रहेगी, तो जो लोग ऑफिस से या स्कूल तो नहीं है, किसी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपका कहीं आ जा रहे हैं, तो उनको एक सेफ ट्रांसपोर्ट मिल पाएगा. इसमें पर्टिकुलरली वुमेन एंड डिफरेंटली एबल्ड, इनके लिए इट विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड ट्रांसपोर्टेशन.

0: निकलने दो यार।
1: श्रोताओं, इंदौर नगर निगम में ड्राइविंग का हुनर दिखाने वाली कई बहनें हैं जो लगातार नगर निगम की उन गाड़ियों को चला रही हैं जिससे इंदौर की सफाई होती है, और वे इस काम में भी मुस्तैदी से जुटी हुई हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। एक ऐसी ही पहना हमसे जुड़ रही है और अपने वाहन चालक के अनुभव को साझा कर रही है।
2: नमस्ते, मेरा नाम रूपांजलि वर्मा है और मैं जोन 18 आजाद नगर मूसाखेड़ी से नगर निगम की गाड़ी चलाती हूँ। और मैंने प्रशिक्षण किया है, मुझे 10 साल हो गए निगम में गाड़ी चलाते हुए। और मैं चाहती हूँ कि मतलब और भी जो महिलाएं हैं ये आगे आए इस काम में, इस कार्य में। एक तो ये जो ड्राइवर का

जो काम है ये बहुत अलग हटके है, मतलब ड्राइविंग का लोग बोलते हैं महिलाओं को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, कुछ अलग हटके है। तो मैंने इसलिए इसको सुना, इस काम को, जो बहुत अच्छा लगा गाड़ी चलाने में। और जहाँ से भी गाड़ी लेके निकलती हूँ जाती हूँ, सब लोग बहुत खुश होते हैं, मोटिवेट होते हैं। लेडीज भी बहुत खुश होती हैं, बोलती हैं हमको भी गाड़ी सिखाओ, हम भी चलाएंगे। बहुत अच्छा लगता है सुन के। और इस काम में मतलब थोड़ी रुकावटें भी आई, घर से भी सबने बोला गाड़ी चलाओगी अच्छा नहीं है, जेंट्स का मर्दों का काम है गाड़ी चलाना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मेरे फैमिली से भी मतलब मम्मी की तरफ से भी ऐसे ही बोला गया। पर अब जब गाड़ी चला रही हूँ और इतने साल हो गए गाड़ी चलाते हुए, तब सब खुश है मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे, और अच्छा लगता है। मतलब मैंने ये ड्राइविंग प्रशिक्षण समान संस्था से लिया है, समान सोसाइटी है जो महिलाओं को गाड़ी चलाना सिखाते हैं, प्रोफेशनल ड्राइवर बनाते हैं, वहां से मैंने भी मतलब सीखा गाड़ी चलाना। तो ASTCL से लेके निगम से लेके जो ये जो कार जो चला रही है महिलाएं, जैसे 300 से ऊपर महिलाएं हैं जो गाड़ियां चला रही हैं, बहुत खुश है सब। मतलब सबकी लाइफ चेंज हो गई है ये ड्राइविंग सीखने के बाद, बहुत कुछ बदलाव आए हैं सबकी लाइफ में, बहुत कुछ अच्छा हो गया है।

अक्सर लोगों का एक सवाल होता है, अरे भाई गाड़ी तो ले लें पर चार्ज कहां से करेंगे, रास्ते में बैटरी खत्म हो गई तो? इसका भी पक्का इंतजाम इस योजना में किया गया है। पीएम ई ड्राइव का एक बहुत बड़ा हिस्सा पब्लिक चार्जिंग स्टेशन बनाने पर खर्च हो रहा है। शहर के मॉल्स, पेट्रोल पंप, हाईवे और पार्किंग एरिया में तेजी से चार्जिंग प्वाइंट लगाए गए हैं। यानी आप अपनी ई गाड़ी लेकर बेफिक्र होकर उज्जैन महाकाल के दर्शन करने जाइए या महू मांडू घूमने, रास्ते में चार्जिंग की कोई टेंशन नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि पीएम ई ड्राइव योजना से सिर्फ पर्यावरण ही नहीं सुधर रहा बल्कि हमारी और आपकी जेब भी खुश है। यह मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रही है और हमारे इंदौर के स्वच्छता के तमगे को और अधिक चमकदार बना रही है। आप भी नई गाड़ी लेने का मन बना रहे हैं तो एक बार इलेक्ट्रिक वाहन को इस योजना के फायदों के बारे में जरूर सोचिएगा। चलिए इसी के साथ मैं अब अनुमति लेता हूं और कहता हूं नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम पीएम ई ड्राइव योजना पर केंद्रित था और प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

डगर विकास की। अभी आपने ये कार्यक्रम सुना। विषय था प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना। योगदान हमारे इंदौर केंद्र का था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत है ताकत फिल्म से। इसे गाया है उदित नारायण और साधना सरगम ने। समीर के लिखे गीत को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विवाह फिल्म का गीत, उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज़ें, रविंद्र जैन का गीत और संगीत।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
3: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
4: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
2: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
3: आकाशवाणी है ना,
5: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
3: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
2: शाम सुहानी हो,
3: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन।

0: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
1: सफर में
0: आपके साथ
1: आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
2: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
1: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूर्णमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। Today, the world is looking for solutions and you have the potential to provide those solutions.
1: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
2: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे। Because this is your time, this is your opportunity. मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
2: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
2: We have seen certain remarks.
3: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोइजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोइजम की सेवाएं समाप्त कर दी थीं। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
4: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोइजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
5: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहाँ तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
6: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहाँ हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
5: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
7: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक

0: ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं।
1: डीकॉलोनाइजेशन।
2: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया।

देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरम ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षी कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास

0: opportunities for youth, urges them to realize their potential for nation's development. Supreme Court directs authorities to ensure unrestricted movement of people and peaceful gatherers are not illegally detained. India rejects UN rights body's remarks on New Delhi events, cites double standards and unwarranted interference in its internal affairs. Flash floods hit Gorkha district of Nepal, 80 people rescued so far, 5 missing. An Indian shooter, Udaiveer Sidhu, wins gold in the men's 10-meter air pistol event at ISSF World Cup in Cairo. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क की तरक्की को उसके मालामाल, सकाफती वरसे और साइंसी कामयाबियों से तकवियत मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत नौजवानों के लिए बेपनाह मौके फराहम करता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को लोगों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने और पुरअमन इज्तम में शरीक अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में न लेने की हिदायत दी है। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के इदारे की जानिब से नई दिल्ली में पेश आने वाले वाकयात पर किए गए तफसरों को खारिज कर दिया है। भारत ने इसे दोहरा मेयार अपनाना और मुल्क के दाखिली मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत करार दिया है। नेपाल के गोरखा जिले में अचानक आने वाले सैलाब में अब तक 80 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 5 अफराद लापता हैं। भारतीय निशानेबाज उदय वीर सिद्धू ने मिस्र के काहिरा में मुनक़िदा ISSF वर्ल्ड कप के मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में वाक़े IIT मद्रास में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट सड़क और रेल ट्रांसपोर्ट, बंदरगाहों के बुनियादी ढांचे, पेट्रोलियम और साइंसी तहकीक के शोबों से वाबस्ता हैं। इन प्रोजेक्टों में तकरीबन 3,700 करोड़ रुपए के कौमी शाहराहों के तरक्याती काम, चेन्नई बंदरगाह से मुतअल्लिक इकदामात और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत रेलवे स्टेशनों की जदीदकारी और तजयनकारी शामिल है। इस मौके पर तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय भी मौजूद थे। इज्तम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने इन प्रोजेक्टों के इफ्तिताह को एक तारीखी मौका करार दिया। उन्होंने कहा कि इन इकदामात से आमदोरफ्त की सहूलतें बेहतर होंगी, सनअत और तजारत को तकवीत मिलेगी और रियासत के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की को उसके मालामाल, सकाफती वरसे, साइंसी कामयाबियों और जदीद बुनियादी ढांचे से कुव्वत हासिल होती है।
2: दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर तमिलनाडु। टुडेज प्रोग्राम इन्वॉल्व्स प्रोजेक्ट वर्थ 13,000 करोड़ रुपीज। वी आर इनोग्रेटिंग मेनी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट एंड लेइंग फाउंडेशन फॉर न्यू वन। सम विल मेक डेली ट्रैवल इजियर, अदर्स विल स्ट्रेंथन industry and trade together. They will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि दुनिया उभरते हुए चैलेंजों के हल तलाश कर रही है और उन्हें यकीन है कि भारत के नौजवानों में इन मसाइल का हल पेश करने की सलाहियत और काबिलियत मौजूद है। वो आज शाम चेन्नई में जय गोपाल गरुड़िया हिंदू विद्यालय की गोल्डन जुबली तकरीबात से खिताब कर रहे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकसित भारत या तरक्की याफ्ता मुल्क के ख्वाब को हकीकत बनाने में नौजवानों का रोल इंतहाई अहम होगा।
2: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस and you have the potential to provide those solutions.
1: जनाब मोदी ने कहा कि भारत नौजवानों के लिए बेशुमार मौके फराहम करता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपनी सलाहियतों को पहचानें, उन्हें बरूएकार लाएं और मुल्क

0: उनके दायरे में रहते हुए इंटरनेट खिदमात बिला तअत्तुल जारी रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल और अमन व अमान के तकाजों के मुताबिक मेट्रो और ट्रेन मामूल के मुताबिक चलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मजीद हिदायत दी कि वकला को अपने पेशे वाराना फराइज की अंजामदही से न रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम की जानिब से अदालती अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह तमाम फरीकैन का मौकिफ सुनेगी और इस बात को यकीनी बनाएगी कि किसी को भी किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। भारत ने इंसानी हकूक के हाई कमिश्नर के दफ्तर OHCHR के दोहरे मेयार और अवामी मामलात पर इंतहाई मुंतखब अंदाज में रद्द अमल जाहिर करने के रवैये पर तनकीद की है। भारत ने नई दिल्ली में गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाले वाक़ियात से मुतालिक तंजीम के तफसरों को मुस्तरद कर दिया है। वजारत खारजा के तर्जमान रणधीर जायसवाल ने एक बयान में तंजीम के तफसरों को गैर जरूरी और मुल्क के दाखिली मामलात में नाकाबिले कबूल मुदाखलत करार दिया। जनाब रणधीर जायसवाल ने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है जहां आईन पुरअमन तौर पर इज्तमा करने के हक की जमानत देता है। इस हक के तहफ्फुज के लिए मुल्क में मजबूत इदारे, आजाद अदलिया और आजाद ज़राए अबलाग मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय शहरी अमनो अमान और सलामती बरकरार रखने से मुतालिक शरायत के तहत इस हक का इस्तेमाल करते हैं। दुबई में भारत के कौंसलेट जनरल ने तस्दीक की है कि तेल बरदार जहाज MTGEM नंबर 2 पर सवार अमले के तमाम 22 भारतीय अरकान को बहिफाजत बचा लिया गया है और वो पूरे तौर पर महफूज हैं। वाज़ह रहे कि रासल खैमा के साहिल के करीब मस्कूरा जहाज में आग लगने का वाकया पेश आया। कौंसल खाने ने एक ताज़ा बयान में कहा है कि वो मुत्तहदा अरब इमारात के हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है और भारतीय जहाज रानों को हर मुमकिन मदद और तआवुन फराहम कर रहा है। इमारात न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुत्तहदा अरब इमारात की नेशनल गार्ड कमांड के कोस्ट गार्ड डिवीज़न ने कल एक तेल बरदार जहाज में आग लगने की इत्तला मौसूल होने के बाद 22 एशियाई शहरियों को बचाया था। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अज़्म के साथ ये सफ़र आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की सिमत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाइख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज़ के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि नव आबादियाती ज़हनियत को ख़त्म करने के मकसद से किए गए इकदाम के ज़रिए इस नज़रिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: जदीद भारत की तारीखी बरतानवी इस्तेमार की 2 सदियों से गहराई के साथ वाबस्ता है और आज़ादी के बाद भी कई दहाइयों तक इसके असरात बरकरार रहे। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान हुकूमत मुल्क को बरतानवी दौरे हुकूमत की यादों से बतदरीज दूर ले जाने की कोशिश कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसील से कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अगले 25 बरसों के लिए 5 अजायम या पंच प्रण पेश किए। दूसरे अज़्म की वजाहत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि शहरियों की ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हत्ता के जहन के गहरे गोशों और आदातो अतवार में भी ग़ुलामी का ज़र्रा बराबर असर नहीं होना चाहिए।
2: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
1: मुल्क को नौ आबादियाती विरासत से आजाद कराने और एक मुनफरिद भारतीय शिनाख्त को फ़रोग देने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में मुतअद्दिद अक़दामात किए हैं। नई दिल्ली में तारीखी राजपथ का नाम बदल कर कर्तव्य पथ रखा गया, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म ने 2022 में किया था। इसी तरह मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक अजीमुशान मुजस्समा इंडिया गेट के करीब नसब किया

0: गया जिसने वहां नसबशुदा शाह जॉर्ज पंजम के मुजस्समे की जगह ले ली। भारतीय बहरिया ने भी 2022 में अपना नया परचम अख्तियार किया जिसमें पहले मौजूद सेंट जॉर्ज की सलीब को हटा दिया गया। हुकूमत ने माली साल 2017-18 से रेलवे बजट को मरकजी बजट में जम कर दिया। इस तरह 1924 से चली आ रही इस रिवायत का भी खात्मा हो गया। बीजेपी रहनुमा राम माधव ने कहा कि भारत की सकाफती और तहजीबी शनाख्त को बहाल करना खुद एतमादी और खुददारी की एक अलामत है। उन्होंने मजीद कहा कि नौ आबादियाती असरात से निजात दरअसल हकीकी हुब्बुल वतनी का अमल है जो आज मुल्क में जारी है। हुकूमत ने बरतानवी दौरे हुकूमत में ममनू करार दिए गए अदब को दोबारा जिंदा करने की भी कोशिश की है। इस मकसद के तहत नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने तहरीक आज़ादी के दौरान ममनू करार दी गई नज़मों तहरीरों और मतबूआत की एक फहरिस्त तैयार की है। इसके अलावा हुक्मरानी को आसान बनाने और फरसूदा कवानीन को ख़त्म करने की कोशिशों के तहत हालिया बरसों में 1500 से ज़्यादा पुराने कवानीन मनसूख किए जा चुके हैं। नई दिल्ली से अक्षित वैद्यान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
1: सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने शारदीय नवरात्रि के मौके पर मुल्क के अवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जम्हूरिया ने कहा कि देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा लोगों को नज्म जब्त और अखलाक अख्तार अपनाने की तरगीब देती है। करगिल की जिला पुलिस ने लद्दाख पुलिस की मोटरसाइकिल रैली टीम को एक पुरवकार तकरीब में रवाना किया। ये टीम कौमी सतह पर राष्ट्रीय एकता दिवस की तकरीबात में शिरकत के लिए गुजरात के सफर पर है। रैली को रवाना करने की तकरीब जिला पुलिस लाइंस करगिल में मुनकिद हुई जिसमें सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नितिन यादव, पुलिस के आला अफसरान और लद्दाख पुलिस ने सीआरपीएफ के एहलकारों ने शिरकत की। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में अचानक आने वाले सैलाब के बाद अब तक 80 से ज्यादा अफराद को बचा लिया गया है। उसमें 9 गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। नेपाल की कुदरती आफात की रोकथाम और बंदोबस्त से मुतल्लिक कौमी अथॉरिटी के मुताबिक 4 हेलीकॉप्टरों की मदद से 82 अफराद को बचाया गया है। यह सैलाब आज सुबह सवेरे आया जिसमें दर्जनों मकानात और पुल बह गए हैं जबकि पनबिजली प्रोजेक्टों को भी नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक चुमनू बरी म्यूनिसिपैलिटी के कई गांवों में तकरीबन 3 दर्जन मकानात बह गए। कम से कम 45 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं जबकि 27 मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने अपने शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र इमरजेंसी का ऐलान किया है। इस इकदाम के तहत सूबाई हुकूमत अमलन खत्म हो गई है। सदर आसिफ अली जरदारी के जारी करदा ऐलान के मुताबिक उन्होंने सूबे में आईनी निज़ाम के मफलूज हो जाने के सबब इमरजेंसी से मुतअल्लिक दफात नाफिज की हैं। ये हालात ऐसे वक्त सामने आए हैं जब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की क़यादत में एहतजाजी मार्च जारी है। भारत के निशानेबाज उदयवीर सिंह सिद्धू ने आज मिस्र की राजधानी काहिरा में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन के राइफल और पिस्टल वर्ल्ड कप में मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में सोने का तमगा जीता। 24 साला निशानेबाज ने तमगों के मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 240.6 पॉइंट हासिल किए और जर्मनी के मुतअद्दिद ओलंपिक तमगे जीतने वाले खिलाड़ी क्रिश्चियन रीट्स को महज 0.5 पॉइंट्स के मामूली फर्क से हरा दिया। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क की तरक्की को उसके मालामाल सकाफती विरसे और साइंसी कामयाबियों से तकवीत मिलती है। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि भारत नौजवानों के लिए बेपनाह मौके फराहम करता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मुल्क की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाएं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्काम को लोगों की आज़ादाना आमदोरफ्त को यकीनी बनाने और पुरअमन इज्तमा में शरीक अफराद को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में न लेने की हिदायत दी है। भारत ने अक़वामे मुत्तहदा के इंसानी हकूक के इदारे की जानिब से नई दिल्ली में पेश आने वाले वाकयात पर किए गए तफसरों को खारिज कर दिया है। भारत ने इसे दोहरा मेयार अपनाना और मुल्क के दाखिली मामलात में गैर जरूरी मुदाखलत करार दिया है। नेपाल के गोरखा जिले में अचानक आने वाले सैलाब में अब तक 80 अफराद को बचा लिया गया है जबकि 5 अफराद लापता हैं। भारतीय निशाने

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत बंटवारा फिल्म से। इसे गाया है अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति ने। हसन कमाल ने गीत लिखा है और इस गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं वार्ड नंबर 1 पोफाली, जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। सदाबहार गीत सुनने के लिए ये एक फरमाइश की है यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, जितेंद्र धर।

धर्मेंद्र मालाकार ने पटेल नगर मलोट पंजाब से फरमाइश की है। डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया ने। अगली फरमाइश है गौरी नगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर पेश है बंटवारा फिल्म का गीत।

क्षमा कीजिए श्रोताओं, ये गीत फर्ज फिल्म से था, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और आइए अब सुनते हैं बंटवारा फिल्म का गीत। अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। गीतकार हसन कमाल, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इस गीत को सुनने के लिए फरमाइश की है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति, प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा और ललित नारायण खर्चे। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इस गीत को सुनना चाहते हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से फरमाइश की है शुभचंद्र बजाज, साहिल और पिट्टा बजाज ने। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से फरमाइशी पत्र भेजा है मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाव खत्री ने। अगली फरमाइश है गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और कान्हा आर्य की। आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं बंटवारा फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में।

कार्यक्रम का आखिरी गीत अभिमान फिल्म से। पसंद करने वाले श्रोता हैं ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, सादुल शहर राजस्थान से, थाना रोड बक्सर से ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतिक बिरक और मीका बिरक। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अभिमान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मजरू के लिखे गीत को संगीत दिया R.S.D. बर्मन ने।

0: अब आज का आपकी फरमाइश कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा। विषय है आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर।
1: ये आकाशवाणी है, विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: श्रोताओं, आप जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला सुन रहे हैं। आज चर्चा का विषय है आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर, और आज हमारे साथ दो आर्थिक विश्लेषक प्रोग्राम में शामिल हैं, शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। शुभमोय, अनिल, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
3: बहुत धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए।
4: धन्यवाद सोनू जी।
2: अनिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो 12 वर्ष गए हैं, इसमें जिस तरह का आर्थिक सुधार हुआ है, खासकर करों की अगर हम बात करें, जो अप्रत्यक्ष करों में जिस तरह के कहें कि रेवोल्यूशनरी एक बदलाव आया है, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में आया, उसे आप कितना मील का पत्थर मानते हैं?
4: हमें अगर इसको समझना है, जो सुधार आर्थिक व्यवस्था में किया है सरकार ने, तो आपको 1991 जाना पड़ेगा, जबकि जो हमने रिफॉर्म्स, देश ने रिफॉर्म्स अंडरटेक किए उस वक्त, तो वो था, उसका मुद्दा था कि भारत सरकार क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बड़ा इसमें जो एग्जांपल था वो था डीलाइसेंसिंग, वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को एग्जिट करना था काफी सेक्टर से। अब आप फास्ट फॉरवर्ड कीजिए, जो पिछले 12 साल में जो किए हैं, ये सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें है कि ये नया जनरेशन रिफॉर्म्स जो है, इन्होंने सरकार का फंक्शनिंग ही बदल दिया। तो पहला था कि सरकार क्या करेगा, अब सरकार कैसे फंक्शन करेगा, वो ही है फंडामेंटल डिफरेंस। तो उसमें जो जीएसटी है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, कि ये एक टैक्स था जीएसटी, जब मतलब 2001 से इस पे चर्चा चल रहा है, उससे पहले से, लेकिन किसी सरकार ने इसको कभी इम्प्लीमेंट करने का मतलब राजनीतिक साहस नहीं दिखाया और एक राजनीतिक कंसेंसस नहीं जुटाया। इसमें अरुण जेटली जी को मतलब याद करना चाहिए, वो स्वर्गीय अरुण जेटली जी, उन्होंने एक इसको एक एंकर किया, एक लीडरशिप किया, और इस टैक्स में जो सबसे बड़ा मतलब जो एक लिसनर जो समझ सकता है बड़ी आसानी से, ये इन्होंने देश को एक आर्थिक लेवल पे यूनिफाई कर दिया, एक इकोनॉमिक एंटिटी यूनिटी बना दिया। पहले था देश में, क्योंकि अलग अलग कर के व्यवस्था थे, तो हर स्टेट का एक अलग होता था, तो 38 सॉवरेन टेरिटरी से सामानों को जाना पड़ता, तो आप सोचिए कितना फ्रिक्शन होता था, कितना इनएफिशिएंसी होता था लॉजिस्टिक्स, मतलब आप तमाम चीजों में देखते हैं अड़चन कैसे। तो इन्होंने 17 मेजर सेंट्रल और स्टेट टैक्स और 13 सेस को एक करके जीएसटी बनाया। तो ये मतलब देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को, दोनों को अगर मिलाएं, और इसका अभी हमें फल साफ नजर आ रहा है। अब जीएसटी रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, फॉर्मलाइजेशन बढ़ रहा है, हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी आ रहा है सिस्टम में। तो ये जीएसटी जो है, भारत का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म है पोस्ट इंडिपेंडेंस।
2: जी शुभमय, आपके पास आते हैं और इस पर ही आपकी भी हम प्रतिक्रिया चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही कहें कि क्रांतिकारी रिफॉर्म है। जैसा अनिल ने बताया कि नेशनल मार्केट बनी है, फॉर्मलाइज हुई है इकोनॉमी, आप बताएं कि जीएसटी क्यों आपके अनुसार एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लगता है, इतने सालों से लंबित क्यों था, और अब जो जिस तरह से इसको उठाया गया और शुरू में जिस तरह की कुछ कहें कि एक भावना थी कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कैसे आप देखते हैं इसकी जर्नी को?
3: मैं काफी गौर से सुन रहा था अनिल जी के काफी भावनापूर्ण जो विचार थे
2: जी।
3: और मैं उससे कहीं बहुत बहुत तरीके से मैं उससे सहमत हूँ। जीएसटी अनिल जी जो बता रहे थे, उसी कड़ी में अगर चलते हुए हम देखें, तो भारत में 2014 से चलते हुए अभी तक की जो श्रृंखला है, उसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो सुधार का कार्यक्रम हुआ है वो है कैपिटल, लेबर, लैंड और कैपिटल, इन तीनों में अगर हम बांटे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो इनमें कैपिटल में सबसे ज्यादा सुधार की मात्रा आई है। और ये इसीलिए इसमें अगर हम देखें जीएसटी को, तो जीएसटी अकेला ही नहीं है, जीएसटी के साथ अगर आप एक और बहुत

0: जिसे कहते हैं महत्वपूर्ण बदलाव जो लाया गया वो है बैंक्रप्सी बिल, इंडियन इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ बैंक्रप्सी इन इंडिया। ये बहुत बड़ा एक बदलाव था, एक तरफ कैपिटल तैयार करना, दूसरी तरफ कैपिटल जो बदलाव आएगा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार लाने के लिए, ये दोनों मिलकर एक बहुत महत्वपूर्ण पदक्षेप थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ कि सरकार लोगों के पास जो सीमित कैपिटल अवेलेबल है, संसाधन अवेलेबल है, वो मुआयना कर रहे थे। वो चीज पहले संभव नहीं था। अभी क्या हुआ कि जीएसटी और आईबीबीआई दोनों एक साथ में, एक तरफ तो लोगों के लिए सुविधा हो गया कि भाई हम अगर हमारी कोई बिजनेस चलते हुए बिजनेस में कोई अड़चने आ गई, कोई बिजनेस को बंद करने की जरूरत पड़ी, तो वो एक सिर्फ रोजमर्रा का इंपेयरमेंट ऑफ कैपिटल के हिसाब से देखा जाएगा और उससे मैं जल्दी से उससे निपट के मैं आगे का प्रक्रिया शुरू कर सकता हूं। और आप देखें स्टार्टअप्स की हमारी इतनी जो तादाद बनी है वो इसी भरोसे पे बनी है कि स्टार्टअप में अगर चलते हुए किसी जगह पे स्टार्टअप नहीं चला, और होता ही है
1: जी,
0: तो वो अचानक लिक्विडेशन वगैरह में उनको कोई अड़चने नहीं आता है। ये बहुत बड़ा
1: जी
0: मील का पत्थर है जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में अगर हम जीएसटी की बात करें तो वो उसी श्रृंखला में कि टैक्स स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही सरल सुविधाजनक सिस्टम बन गया है। भारत में अगर हम बहुत सारे जो इसके बाद के जो बदलाव आए हैं वो बदलाव इन दोनों से जुड़े हुए हैं कि इन दोनों को एक बेस बनाकर फिर आगे लोगों को भरोसा आया है, रुचि आया है कि भाई वो कैपिटल लेकर कोई नया बिजनेस, कोई नए संभावनाओं के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं
1: जी।
0: जहां तक आपके सवाल थे कि ये क्यों नहीं बना का सबसे बड़ा चीज था मंशा, और उसका वजह यह है कि हम जीएसटी किस लिए ला रहे थे। जीएसटी एक कड़ी में है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये कड़ी के अंतर्गत होके आया और तभी जाके जीएसटी बना। 2017 में ये जीएसटी का प्रक्रिया शुरू हुआ और जैसे आप देखें कि सालों साल चलते हुए वो जीएसटी एक एक करके उसमें जो अड़चने थे वो सिंप्लीफाई किए गए। तो उसमें भी जैसे हर साल में जो मीटिंग होता है, और अगर वो जो मीटिंग शुरुआत में हुए थे, कई सारे मीटिंग्स करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें थे, चुनिंदा सवाल थे जिनको हल करना सारे राज्यों को मिलके और केंद्रों के साथ मिलके, तो उसका निपटाना जरूरी था। तो इसलिए ये किसी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का भी एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन मान सकते हैं
1: जी।
2: डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था।
1: हम देख रहे हैं हर महीने जब जीएसटी कलेक्शन की फिगर्स आती हैं तो बहुत रोबस्ट आती हैं, उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। सो आपको लगता है कि अब जैसा आप कह रहे हैं कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है सरकार का, तो लोग टैक्स इवेजन से भी अब बच रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा उसमें टैक्सेस पे करने में वो अपने आप को एक तरह से कह रहे हैं कोऑपरेशन का एक भावना से टैक्सेस टैक्स सिस्टम में शामिल हो रहे हैं।
3: बिल्कुल सोनू, आपने सही मुद्दा पकड़ा है। मैं आपको भारत के आर्थिक इतिहास में बहुत साल पहले ले जाता हूँ। 1960-1970 में इनकम टैक्स जो होता था 90% के ऊपर होता था, आई थिंक 97% होता था। तो आप खुद ही सोचिए, जो इंसेंटिव था टैक्स इवेजन था, टैक्स अवॉइडेंस नहीं था। उसमें ये दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। इवेजन में मतलब आप टैक्स पे करना नहीं चाहते, आप छुपा के आप इनकम छुपाते हो। अब जीएसटी जब आया ना, तो आपको जब टैक्स क्रेडिट मिला, अब जीएसटी का एक्चुअली समझना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बेसिक पॉइंट क्या है। ये जीएसटी पहले जो होते थे इनडायरेक्ट टैक्स, एक्साइज वगैरह, वो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन पे था। अब जो है पॉइंट ऑफ कंजम्पशन पे टैक्स लगता है, तो मतलब उसके साथ में जो भी टैक्स पे करता रहेगा रास्ते में उनको क्रेडिट मिलेगा
1: जी।
3: तो वो क्रेडिट आपके खर्चे से कम होगा, तो आपका उतना मार्जिन रहेगा, राइट। जो पहले होता था वो टैक्स बढ़ते जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था, जो कंज्यूमर लेवल पे फाइनली आता था बहुत ही इम्पैक्ट ज्यादा होता था। तो एक तो टैक्स का इंसिडेंस और इम्पैक्ट कम हुआ, दूसरा क्योंकि आपने टैक्स क्रेडिट देना शुरू किया तो कंपनीज को इंसेंटिव रहा कि जो इवन छोटे मध्यम वर्ग MSME, आपने जो आंकड़ा दिखाया ना 60 लाख से 1,70,000 करोड़, तो ये इसमें ज्यादातर MSME है। तो इनका भारत में कुछ आई थिंक 65,000 कुछ MSME है, मेरे नंबर एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तो इनकी जो रजिस्ट्री हुई है ना, इनके कारण पड़ा है, तो इनकी इंसेंटिव रही। पहले ये अवॉइड करते थे सिस्टम में आने से, कैश का जो ट्रांजेक्शन करते थे। तो आपको याद है नोटबंदी में जो मतलब हुआ था 2016 में, तो उसका मुद्दा यही था कि इसके कारण ब्लैक मनी जनरेट होता है। तो इसके जो फायदे है ना, आपने ट्रांसफर

0: रेजिम बनाया, फिर आपने रेट सेट कर दिया जो रेगुलेटरी ओवररीच है। पहले एक्साइज इंस्पेक्टर आपके फैक्ट्री के दरवाजे पे पहुंच जाते थे, आज उनको कोई कारण बताना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा अगर वो आपको इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जो इम्पैक्ट, जो एक जो आपने बोला कंप्लायंस, वो एक वॉलंटरी कंप्लायंस रहा है। मतलब उद्योगों में एक इंसेंटिव है कि हम टैक्स कंप्लायंट रहे, हमें कम झमेले हैं, सारा ऑर्गेनाइज्ड है। और इसका एक सबटेक्स्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये जो रिसीट होते हैं ना, ये पेमेंट रिसीट्स वगैरह जो कैश रिसीवेबल्स होते हैं कंपनी के बुक्स पे, आजकल जो फिनटेक्स आ रहे हैं, जो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो आरबीआई ने इसको और लिबरलाइज किया है क्रेडिट पॉलिसी में, इस अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क में आपके जो ये रिसीवेबल्स हैं इसके बल पर आपको क्रेडिट मिलेगा। आपको कोलैटरल मतलब घर फैक्ट्री गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी लोन के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबटेक्स है। तो जीएसटी जब हम देखते हैं ना, एक फाइनल पॉइंट ही नहीं देखना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है, इसके जो फायदे हैं अनेकों फायदे हैं।
1: शुभम भाई, आपके पास आते हैं, जो एक कर डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स है, वो एक ऐसी चीज है जिस पर हर नागरिक की नजर होती है जब बजट भी आता है। तो इनकम टैक्स रिफॉर्म्स जो हुई हैं पिछले 12 वर्षों में और हालिया जो रिफॉर्म्स हुई हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? जो फेसलेस असेसमेंट है या जिस तरह से इस नई जो कर प्रणाली आई है जो ऑप्शनल थी और जिसमें आपका रेट लोअर है लेकिन एग्जेम्पशंस नहीं है, तो ये जो पूरी जो एक जो बदलाव है उसके क्या क्या पहलू आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से?
2: देखिए, इनकम टैक्स आदतन एक टैक्स ऑन लेबर है कि लोग जो परिश्रम करते हैं उसके ऊपर टैक्स है। तो निश्चित ही अगर ऐसा टैक्स अगर हो तो इस टैक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोगों को परिश्रम का जो एफर्ट का जो रिवॉर्ड है वो लगे कि सरकार के पास ही जा रहा है, हमारे पास नहीं आ रहा है। तो पहली बात तो पिछले साल जो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बदलाव लाए टैक्स रेट्स में, 12 लाख तक के इनकम को उन्होंने इनकम टैक्स से रियायत दे दी, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और ये इनकम टैक्स में जनरली बदलाव बहुत जल्दी नहीं किया जाता है, 5 साल 6 4 साल वगैरह के अंतराल में किया जाता है। और लेकिन हर बारी वित्त मंत्रियां थोड़े थोड़े करके इस टैक्स में कुछ कुछ, मतलब जैसे कहते हैं लोगों के लिए लुहाने बनाते थे, इन्होंने एक झटके में इसको उठा के 8 लाख से उठा के 12 लाख कर दिए। अपने आप में ये बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो गया कि भाई इतना तक के इनकम, 12 लाख भारत जैसे देश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पर कैपिटल इनकम के हिसाब से अगर देखें तो ज्यादातर क्या ओवरवेलमिंग परसेंटेज ऑफ लोग जो इनकम कर रहे हैं सैलरी से मिल रहा है वो 12 लाख के सीमा रेखा के अंदर आ जाते हैं, और बाकी डिडक्शंस वगैरह लेकर और भी उसके ऊपर थोड़ा सा 12,75,000 का पहुंच जाता है। तो ये बहुत ही मूलभूत बदलाव था कि कॉन्फिडेंस इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर।
1: जी,
2: दूसरी बात जिसके आपने अपने जो प्रसंग उठाया वो था फेसलेस असेसमेंट। ये फेसलेस असेसमेंट का मतलब क्या है कि भाई इनकम टैक्स आप दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो इलेक्ट्रॉनिक बना दिया गया है, और वो ही बहुत बड़ा एक बदलाव था कि धीरे धीरे चलते हुए अभी इनकम टैक्स को किसी जगह पे जाके टैक्स देने का संभावना है ही नहीं, किसी सरकारी कर्मचारी से आपकी मुलाकात होगी ही नहीं, क्योंकि टैक्स आप जो भरेंगे और टैक्स के जो फॉर्म्स आएंगे वो प्री सेट टैक्स फॉर्म्स आ जाएंगे। यानी कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई मेरा टैक्स क्या है, कैलकुलेशंस अपने आप में उसी में ही प्रीफिल्ड फॉर्म्स में आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने का भी जरूरत नहीं है, बैंक अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर देखने की जरूरत नहीं है, उन सारे जगह से नंबर्स को समेट कर प्रीफिल्ड टैक्स फॉर्म आ जाता है, और उसमें कहते हैं कि इतना टैक्स आपका हुआ, अगर आपको सही लगता है तो यस, अगर नहीं हुआ तो फिर आप उसमें बदलाव कीजिए। तो ज्यादातर लोगों को, ज्यादातर क्या, अगेन मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 90% ज्यादा लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सुविधा है कि सोचने की जरूरत नहीं है, टैक्स फॉर्म पहले से भर के आ रहा है और उनके सैलरी के साथ मैच्ड है, बस अब इसको यस कर दो और आगे चलते बनो। तीसरा चीज जो किया गया वो है फेसलेस असेसमेंट, यानी कि बाकी जो लोग जिनको टैक्स में कुछ बदलाव की उन्हें लग रहा है, ये जो टैक्स पे करने के लिए मुझे कहा जा रहा है पेमेंट करने के लिए उसमें मेरी कुछ आपत्ति है, तो उसमें भी सबसे बड़ा जो चेंज कर दिया गया है कि ये नहीं कि आप बॉम्बे में बैठे हैं तो आपके बॉम्बे के ही इनकम टैक्स ऑफिसर आपको पकड़ेंगे या आपसे बात करेंगे, वो चला गया है कहीं और उनसे आपकी फिर से जो वार्तालाप होगी वो ट्रेन या प्लेन से आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है, वो दूर में कहीं और पे बैठे हैं, आप यहाँ पे बैठे हैं और उनसे भी आपकी जो डिस्कशन होगी वो पूरी ऑनलाइन, यानी कि जो पूरा टैक्सेशन प्रोसेस है डायरेक्ट टैक्स का, वो इतना इम्पर्सनल कर दिया गया कि लोगों को इस बारे में सोच विचार करने की

0: जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए आप जब देख रहे हैं, आप जो नंबर का जिक्र किए कि इतना ज्यादा नंबर्स पे लोग टैक्स पे कर रहे हैं, टैक्स फाइलर्स का नंबर आ गया है, वो इसीलिए कि ये प्रोसेस इतना ही ऑटोमेटिक बन गया है कि इस प्रोसेस में ज्यादातर लोग शायद याद भी नहीं रखते कि हमने टैक्स रिटर्न फाइल किए हैं। और इससे फायदा क्या हुआ है कि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल नागरिक के लिए जिंदगी आसान हो गया है, दूसरा सरकार के लिए भी ट्रैकिंग की इनकम टैक्स आ रहा है, इनकम टैक्स में जो रिटर्न आएगा वो कितना किस परसेंटेज से बढ़ेगा, तो अपने बजटिंग के में ये एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सुविधा हो जाता है कि उनको पता है कि इतना सारा जितने सारे टैक्स में देने वाले लोग थे, इनके खेमे में आने वाले थे, उन सबको उसमें डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया गया है
1: जी।
0: तीसरा चीज जो बहुत बड़ा चीज है वो ये है कि टैक्स रिटर्न होने के वजह से फॉर्मलाइजेशन लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया है। छोटे छोटे इनकम सैलरीड वाले जो कंपनियां, जो एसएमई वाले एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए भी इनकम टैक्स देना क्योंकि बहुत ही इजी है, इसीलिए लोगों को प्रवृत्ति हो गया है कि अभी इनकम टैक्स और जीएसटी इन सारी चीजों में कोई आपत्ति करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सारे सामने आ जाते हैं।
1: जी,
0: अगर हम साथ में क्यूआर कोड को, अगर उसके साथ में, अगर हम तीसरा चीज तीसरा पिलर को अगर उसके साथ में लाएं, यूपीआई का जो सिस्टम है, तो ये तीनों मिलाकर जो फाइनेंशियल सिस्टम एक इतना बड़ा, एक 1.5 बिलियन लोगों की जो एक इतनी बड़ी तादाद है, इन सब के लिए एक जिसे कहते हैं फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बन गया है जिसका संभव क्या, इनफैक्ट मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ दुनिया में इसका कोई तुलना ही नहीं है कि इतने बड़े लोगों को इतने कम समय में इतने बड़े फाइनेंशियल नेटवर्क के अंदर शामिल करना, उनके लिए एक आइडेंटिटी देना और साथ में उनके लिए ये भरोसा देना कि ये चीज आपके लिए काम का है।
1: अनिल जी, अगर आपके पास आए, आपको लगता है एक और भी एस्पेक्ट है कि भयमुक्त हो गया है, अब जो करों का जो एक डर होता था वो खत्म हो गया है और ट्रांसपेरेंसी आ गई है पूरे सिस्टम में?
2: काफी हद तक सोनू आ गया है, लेकिन जो एक माइंडसेट है जो हमारे रेगुलेटर्स में है वो उसको बदलना बहुत आवश्यक है, वो टाइम लगेगा। अभी वो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एरा का अभी भी ट्रॉमा इनके दिमाग में है, तो रेगुलेटरी ओवररीच जो है वो हमें जीएसटी में भी दिखते हैं, मतलब एनेक्डोटली जो दिखता है, इनकम टैक्स में भी दिखता है, तो इसको और भी ट्रांसपेरेंट करना होगा। लेकिन वित्त मंत्री इसके, शी इज अवेयर ऑफ इट, उन्होंने हाल में इनफैक्ट कुछ चेंजेस लाने का उन्होंने एक प्रॉमिस किया था, लेकिन पिछले बजट में नहीं लेके आ पाई वो, तो मुझे लगता है अगले बजट में वो ट्रांसपेरेंसी के लिए और चेंजेस लाएंगी, तो डेफिनेटली वो बदलाव तो आया ही है।
1: आइए सुनते हैं जीएसटी पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट।
3: जीएसटी लागू होने से पहले देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था कई केंद्रीय और राज्य करों में बटी हुई थी। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स और मनोरंजन कर जैसे कई कर अलग अलग स्तरों पर लगाए जाते थे। राज्यों के बीच टैक्स की दरें और नियम भी अलग थे। इसका असर कारोबार की लागत, सामान की कीमत और देश भर में व्यापार की गति पर पड़ता था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी टैक्स पर टैक्स, यानी एक चरण पर चुकाए गए टैक्स का बोझ अगले चरण की कीमत में शामिल हो जाना। जीएसटी पर काम की शुरुआत वर्ष 2000 में हुई। वर्ष 2006 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राजनीतिक और प्रशासनिक सहमति बनने में कुछ समय लगा। वर्ष 2016 में संविधान के 101वें संशोधन के बाद जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। इसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच दरों, नियमों और राजस्व से जुड़े मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श भी हुआ। आखिरकार 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुआ। इस वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार माना गया। जीएसटी ने केंद्र और राज्यों के 17 अलग अलग करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था में शामिल किया। जीएसटी की खासियत यह रही कि इसमें टैक्स का भुगतान केवल उत्पादन या बिक्री के अलग अलग चरणों पर नहीं बल्कि वस्तु या सेवा की आपूर्ति पर आधारित किया गया। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था ने कारोबार की अलग अलग कड़ियों में टैक्स के दोहराव को कम करने में मदद की। शुरुआत में नई डिजिटल व्यवस्था को अपनाना कारोबारियों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन समय के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रिटर्न फाइलिंग, ई वे बिल और ई इनवॉइस जैसी व्यवस्थाओं ने टैक्स अनुपालन को अधिक डिजिटल और व्यवस्थित बनाया। इसी बदलाव का असर टैक्स बेस पर भी दिखाई दिया। वर्ष 2017 में जीएसटी के करीब 66.5 लाख करदाता थे। मई 2026 तक इनकी संख्या बढ़कर 1.65 करोड़ हो गई। इसी अवधि में सकल जीएसटी संग्रह 2017-18 के करीब 7.4 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2025

26 में लगभग 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी जीएसटी ने केवल टैक्स जमा करने का तरीका नहीं बदला, इसने देश के कारोबार को एक साझा बाजार से जोड़ने, अर्थव्यवस्था को अधिक औपचारिक बनाने और टैक्स अनुपालन को डिजिटल करने की दिशा में भी बड़ा बदलाव किया। आज जीएसटी की

0: is always a work in progress. जैसे जैसे situations evolve होती हैं तो policy को भी evolve होना होता है, और जैसे कि अभी हमने देखा कि GST की जो latest meeting उसमें process reforms, structural reforms, slabs तो कम हो चुके हैं already, लेकिन process reforms, structural reforms उस पर अभी भी कार्य हो रहा है. एक और जो area है जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे, अगर आपके पास आयुषु बुमोए, FEMA जो foreign exchange management reforms है, FEMA जो foreign exchange management act, उसमें जो reforms किए गए हैं ताकि जो businesses हैं उनमें एक सुगमता आए व्यापार में, और उस साथ ही साथ safeguard भी हो, इसको आप कैसे देखते हैं? कई चरणों में ये सरकार ने इन 12 वर्षों में किया है, सो ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है ऐसे समय पे जब बहुत ज्यादा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट जरूरी हो गया है?
1: सोनू जी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में जो बदलाव आया है उसके साथ एक और बदलाव साथ में आया है. इनफैक्ट मैं दो चीजों का जिक्र करूंगा
0: जी.
1: एक आया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये एक साथ में एक मूलभूत चेंज, और इसके साथ में FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये तीनों का जिक्र करना जरूरी है क्योंकि तीनों एक दूसरे को इम्पेक्ट करते हैं.
0: जी जी.
1: सरकारी मूलतंत्र का ये सिक्वेंस रहा था कि हम इस तरीके से बदलाव लाएंगे कि मोटा मोटी जो भी शख्स नहीं, मैं कहूंगा कंपनी, या फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं या फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो समान तरल होनी चाहिए. यानी कि के पहले, अब देखिए जिसका जिक्र अनिल जी पहले कर रहे थे कि एक पुरानी माइंडसेट की, ये पुरानी माइंडसेट फॉरेन एक्सचेंज के मामले में बहुत ज्यादा था, और हमने बहुत सारे हॉरर स्टोरीज सुने थे फॉरेन एक्सचेंज को लेकर, कंपनियों में बहुत सारे झमेले, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के रेड्स, इधर इनफैक्ट स्टेट लेवल में भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के बहुत सारे अनुशासन वगैरह वगैरह, इन सब मिलाकर एक अस्त व्यस्त हालत था फॉरेन एक्सचेंज को लेकर. इसमें प्रगति लाने में सरकार ने सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बदलाव जो लाए हैं वो ये है कि सारे कंपनियों को उन्होंने एनकरेज किए हैं कि आप या तो कंपनी यानी कि रजिस्टर ऑफ कंपनीज के तहत आप रजिस्ट्रेशन हो जाइए, और अगर ना भी हो सके तब भी अगर आप सेक्शन 8 कंपनी, जो कंपनीज एक्ट के तहत ही आता है, लेकिन वो एक जिसे कहते हैं नॉन प्रॉफिट कंपनी है, कि आपके प्रॉफिट लॉस कुछ का दायरा नहीं है, लेकिन आप फिर भी एक कंपनी, तो आपके लिए वही मोटा मोटी रूल्स लागू होंगे जो बड़े कंपनियों के लिए. तो इससे फायदा क्या हुआ है कि सबके लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट सिस्टम क्लियर हो गया है, और ये चीज FCRA में भी काफी हद तक पुश किया गया है कि जो कंट्रीब्यूशंस आएंगे फॉरेन एक्सचेंज के, जो फॉरेन एक्सचेंज से जुड़े हुए कामकाज होंगे, वो शुड बी अबव बोर्ड, यानी कि वो दिखना चाहिए कि किस लिए किस तरीके से आ रहे हैं. और इसकी जरूरत क्यों है, अगर हम दुनिया की किसी भी बड़े देश को अगर हम देखें इस वक्त, तो एक बहुत बड़ा उथल पुथल चल रहा है, और वो उथल पुथल क्यों चल रहा है, क्योंकि करेंसी दूसरे देशों से आने वाले पैसे, उसके चलते राजनीतिक इम्पैक्ट, दवा दबोच वगैरह बहुत सारी चीजों की प्रक्रिया है. उन सभी चीजों के चलते हुए सारे बड़े बड़े देशों में इस पर निगरानी रखने की नया नया सिस्टम्स जो इनकोऑर्डिनेटेड है उनको लाया गया, और उसको लाने के लिए क्या किया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अंतर्जातिक एक सिस्टम है. इसमें भारत 2014 में मेंबर बन गया है, और भारत काफी जिसे कहते हैं इलस्ट्रियस मेंबर बन गया है इसका. ये OECD का पहले होता था, सिर्फ ये डेवलप्ड कंट्रीज का एक क्लब था जिसमें भारत पहला नॉन OECD मेंबर है जो इस FATF के मेंबर बने, फुल मेंबर बन गए. और फुल मेंबर होने की वजह से क्या हुआ कि भारत की जो एक उन देशों के बीच में विश्वास आया कि भारत के फॉरेन एक्सचेंज ट्रीटमेंट अंतरराष्ट्रीय बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत है, ये एक बहुत बड़ी चीज है
0: जी.
1: दूसरा, भारत का जो ट्रीटमेंट है वो दूसरे देशों के लिए, खासकर ग्लोबल साउथ के बाकी सारे देशों के लिए एक तुलनात्मक चीज बन गया है कि इस तरीके से किया जा सकता है. ये चीजें सब मिलाकर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में जो एक सुधार किया गया है वो सब मिलाकर बन गया है एक इंटीग्रेटेड सिस्टम. अब नेचुरली कि ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम बनेंगे तो उसमें होता ही है कि कुछ किसी न किसी को इसमें मुश्किलात पहुंचती है, वो लाजमी है, लेकिन ये जो पूरे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर कोई दो राय। और इसलिए आप देखेंगे इसके साथ ही एक और चीज किया गया था जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में बहुत काम में आया, वो है शेल कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज हमारे

0: में होते थे जो सिर्फ नाम से होते थे
1: जी।
0: और एक एक एड्रेस में 200-300 कंपनियों की रजिस्ट्रेशन होती थी। इन सारी कंपनियों का बेसिकली काम था फॉरन एक्सचेंज को लाना और लाकर कोई ना कोई गलत काम में इसको इस्तेमाल करना। आपको याद होगा ट्रेवल वगैरह में बहुत सारे टाइम में हमने जब इस पर जब बारीकी से जांच हुआ है तो दिखा गया है कोई ना कोई शेल कंपनी के थ्रू से ही ये सारे पैसे आए। ये सारे चीज जड़ से उखाड़ने के लिए जो प्रक्रिया किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से, इससे बहुत बड़ा फायदा आया है कि अभी किसी भी सरकारी तंत्र के सिस्टम्स को इस बारे में पता चलता है, पूछ रहती है किस तरीके से उसको निपटा जाए, उस पर वो खबर रख सकते हैं। जी
1: अनिल जी, एक और जो पहलू है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विश्वास बना है बिजनेसेस को शामिल करने के लिए, जन विश्वास जो अधिनियम आया है 2023 में जिसमें डीक्रिमिनलाइज किए गए हैं 183 प्रोविजंस 42 सेंट्रल एक्ट्स में और उनको क्रिमिनल ऑफेंस से सिविल पेनल्टीज में बदला गया है जो माइनर और टेक्निकल लैप्सेस है, ये कितना आपको इम्पोर्टेंट लगता है? और जो पुराने लॉज है उनमें लगभग 1500 जो सेंट्रल लॉज थे जो आउटडेटेड थे उनको हटाया गया है, ये भी क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है?
2: बिल्कुल सोनू जी, इनफैक्ट इसको इतनी देर हो गई यही मैं हैरान हूँ। जो ये जो पुराने जो लॉ होते थे अजीब अजीब किस्म के कानून होते थे जो अंग्रेज बना के गए तो वो आज तक चलते आ रहे थे, तो उनको जैसे एक एक करके जो इसको हटाने का जो प्लान था आप जान के हैरान होंगे, ये 1993 का है जो स्वर्गीय विवेक देबरॉय थे ये उस टाइम IIFT में थे, इन्होंने एक एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया था और उसमें इन्होंने सारे जो लॉस थे ये जो हटाने हैं तो 1993-94 में इन्होंने छापा था ये कमिटी का रिपोर्ट और उसको मतलब ये सरकार जो है मोदी जी की सरकार जब आई इन्होंने उसको उठाया और फिर उसको जो प्रोसेस रिफॉर्म लेवल पे पुश किया। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो जो हमने डिस्कस किया कि जो माइंडसेट है जो एक मतलब बिजनेसमैन की ओर जो है एक एक अप्रोच है वो उसमें तो बहुत ही बहुत बड़ा बदलाव आया है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो ये लॉस है अब इनको भी बदलना है। अब जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि रेगुलेटरी ओवररीच ये एक बड़ा प्रॉब्लम है जो ये ना भारत सरकार ना स्टेट लेवल सरकार इसका कोई मसले का हल तुरंत ढूंढ पा रहे हैं। इस पे कोशिश तो जरूर जारी है लेकिन इस पे और भी मेहनत करना है क्योंकि हमारे जो ये उद्योगपति हैं खास करके मध्यम वर्ग में इनको जो रेगुलेटरी जो हैरासमेंट होता है इसके कारण फ्रिक्शन बढ़ता है। जब फ्रिक्शन बढ़ता है इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी नहीं होता है मतलब ग्रोथ नहीं होता है
1: जी।
2: तो इसको हटाना एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी नेशनल प्रायोरिटी बनाना चाहिए
1: जी। तो शुभमय जो अभी अनिल जी कह रहे थे कि कॉन्स्टेंट सिंप्लीफिकेशन प्रोसेसेस की रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के थ्रू जिसके बारे में सरकार भी पूरी तरह प्रयासरत है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस की हम बात सुनते हैं और डिजिटलाइजेशन से अलग अलग जो बिजनेस एस्पेक्ट्स हैं, GST की तो हमने बात करी ही, आपको परमिट्स मिलने हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्रेडिट जो मिलता है ये टेक्नोलॉजी की वजह से जो उसमें ईज आई है, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपको लगते हैं ओवरऑल जो बिजनेस एनवायरमेंट है उसको बेहतर करने के लिए?
0: बिल्कुल सोनू जी, और इसमें अगर आप देखें कि अभी जो डिबेट चल रहा है MDR चार्जेस को लेकर UPI में, अगर आप इसको देखें तो ये बड़ी दिलचस्प चीज है। वो क्यों एक समय था जब लोग कैश से ही कोई ट्रांजैक्शन करना नॉर्मल मानते थे, उसी में ही चलते थे
1: जी।
0: आज भारत की इतनी बड़ी जनता का तादाद UPI के बनाए हुए QR कोड के ऊपर इतने डिपेंडेंट हो गए हैं कि उनको अभी लगता है कि ये चीज हट जाएगा तो हमारे लिए हम ऐसे वापस पहुंच जाएंगे कहीं, और वो पहुंचना नहीं चाहते। ये एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं माइंडसेट का बदलाव है। अगर हम इसको देखें तो ये अविश्वसनीय है कि किस तरीके से लोग एक मतलब लोग का कहना है कि ये एक रिफॉर्म है और इस रिफॉर्म को हम इसको अपना चुके हैं, इस पर हम बिल्कुल इसमें हम लीन हो गए हैं और

0: हम इस पे ही टिकना चाहते हैं, एमडीआर चार्ज होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो अलग बात है,
1: जी
0: वो उसके ऊपर तर्क हो सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा चेंज कि जो गरीब से और इस चेंज इसलिए मूलभूत है कि गरीब से गरीब आदमी भी कहता है कि नहीं, हम सबसे बड़ा ये जरा देखिएगा कि कहीं हमको इससे हटना पड़े, इससे हम
1: जी
0: हटना जाए।
1: जी
0: तो ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आप कह रहे हैं जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, वो इसका एक जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ा मिसाल है। और इसमें सिर्फ क्यूआर कोड नहीं, अगर आप इसके नीचे देखें तो इसमें इंक्लूडेड है बैंक अकाउंट्स, यानी कि देश के सारी जनता एडल्ट जो है सबके पास बैंक अकाउंट है। अगर हम इसके नीचे जाए तो देखेंगे कि इसके नीचे सबके आधार का जो श्रृंखला है वो है। तो कुल मिलाकर ये एक फाइनेंशियल सिस्टम को बदल देने का इतना बड़ा एक जिसे कहते हैं एक एक ठिकाना है, एक सिस्टम है जिसको जिसका फिर से मैं वही कहूंगा कि इसका फ्रेंकली कोई कंपैरिजन नहीं है दुनिया में।
1: जी
0: और यही चीज साथ में अगर आप देखें बाकी सारे चीजों में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी, बाकी क्षेत्र में भी इसी का ही जोर है, इसी का ही आवाज है कि भाई हमें भी इसी तरह का सुविधा चाहिए कि
1: जी
0: अगर इनकम टैक्स आराम से भर सकते हैं, अगर हम जीएसटी में कोई झमेला नहीं होता है, अगर पेमेंट प्रक्रिया अगर सुचारू ढंग से चलता है जिस पर हमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो आपको याद होगा कि जैसे एक टाइम था कि स्मॉल कंपनीज को जब अपना कैश लेकर जाते थे बैंकों में तो आए दिन खबर आती थी कि फलाने के जगह पे डाका लग गया है, यहाँ पे कुछ वो पैसे लूटपाट हो गया है। अब वो सारे खबरें जिसे कहते हैं इतिहास बन चुका
1: जी
0: है,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: वो पैसे लेकर जाते ही नहीं है,
1: बिल्कुल
0: वो जरूरत नहीं होती है।
1: बहुत
0: तो ये चीजें जो गांव दूर दूर के गांव तक में भी ये इसका प्रक्रिया इतना बड़ा बन चुका है कि वहां पर तो खासकर इस चीज को लेकर ही लोग चलते हैं कि भाई पैसे लेकर कौन चलेगा।
1: जी जी
0: तो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एक बहुत बड़ी जिसे कहते हैं स्तंभ है। अगर हम इसको अगर आगे देखें कि ये किस तरीके से बिजनेस को बदल रहा है, तो बिजनेस चलाने में जो परमिट्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो सारे फिर इसी से ही जुड़े हुए बन गए हैं कि वो बन किसी बिजनेस को किसी चीज परमिट मिलने में काफी आसानी हो गई है। और हाँ, मैं ये जरूर मानूंगा कि अभी भी बहुत सारी जगह पे और वो शायद हमारी एक गलत हमारी जो तरीका है कि हम फूड क्वालिटी कैसे रख रहे हैं, उसमें क्या चीज किस तरीके से क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं, उस पर जरूर निगरानी होनी चाहिए, उस पर
1: जी
0: लोगों को भरोसा आना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि एक कंपनी जिनके नाम हमारे मुंह से एकदम जस्ट बच्चा बच्चा भी याद बोल देता है कि ये सारे कंपनियों का हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे अगर इस तरह का पेमेंट सिस्टम नहीं आ सकता। और इससे आज जुड़े हुए जो
1: जी
0: गिग इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए इतने मिलियंस की जो नौकरी है, ये पूरा ये सोच में भी नहीं आ सकता था अगर ये फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का बंदोबस्त अगर नहीं तैयार होता।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभमोय अनिल, आप शामिल हुए इस कार्यक्रम में, जन सेवा से देश सेवा, और आपने इतनी बारीकी से हमें समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद सोनू जी।
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 25वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी और अनिल पद्मनाभन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा अभी आपने सुना। विषय था आर्थिक सुधार एक नई व्यवस्था की ओर। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। छोटी बहन फिल्म का गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और सुबीर।

इस गीत के बाद अब सुनिए मौसम फिल्म का गीत। इसे गाया है कृष्णदास सगाठिया ने, इरशाद कामिल ने गीत लिखा है और संगीतकार हैं प्रीतम।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से फिल्म संगीत कार्यक्रम। शोला और शबनम फिल्म का गीत सुनते हैं। शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने इस गीत को गाया है। गीत लिखा है अनजान ने, संगीतकार हैं

और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है जिद्दी, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार एस डी बर्मन।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दिल्ली से समाचार रिले होंगे।
1: समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक

0: एक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दिल्ली की यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी है।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones.